की सारी जो है सोच ऐसी सब कोई आई मारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो सारी है, अपना ती अपना

0: आप गवाए सेवा करे ताक्ष पाए मान, नानक जिसनु लगा तिस मिले, लगा सुप्रवान महला दूजा।
1: जो जीव होए सो गवै मुका कया वा, बीजै बिख मंगे अमृत, वेखो एहो न्या महला दूजा। नाले आने दोस्ती कदे ना बैरास, जिहा जाने ते हो वरतै, वेखो को निरजास। वस्तु अंदर वसना वे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म न चले, कही बने अरदास। कूड़ कमरने कूड़ो होवे, नानक सिफत विगास महला दूजा।
0: नाल आने दोस्ती वडार सोने हो, पानी अंदर लिक ज्यों, तिसदा थाओ ना थे हो महला दूजा।

0: एक ने ही दाता पुस्ती जो पाई है नानक सक्रमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
1: एक ने ही चकरी जिस खसम ना जाए नानक सेव कड़िया जिसे ती खसम समाए पड़ी ना।

एकरूप। बोलो जी, जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्महीत शीस दिते बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा रही कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुआसा नाल निभाए, तिना दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी, पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी, प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी का वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चेते आवे चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रहाए, ते देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी, सिखां नूं सिखी दान के सुदान रहत दान, बबेग दान वसाह दान भरोसा दान धना सरदार नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगी अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत कहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश समतोज कह जै कोट इंद्र इंद्राण साहि सहाण गणिजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत चेतना है तो चेत लै निस्दिन मह प्राणी छिन छिन औद बिहात है फूटै घट ज्यों पानी हर गुण काहे न गावहि मूर्ख अज्ञाना झूठै लालच लाग कै नह मरन पछाना अज हूँ कछ बिगड़यो नहीं जो प्रभु गुण गावै कह नानक तेह भजन ते निरपै पद पावै धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया सिखियत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाहो अतोल तू तेरा अंत न पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली सो कहो टल गुर सेवी है।

हूँ ठाकुर ओच भगवाना। मैं हर हर नाम तरसोई, ज्यों भावे त्यों रख मेरे साहिब।

मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब सजाने ला सब तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर आनंद उदय तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जर।

हम जैसे अपराधी अवर कोई रखे, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए, जैसे हम सतगुरु राख लिए।

हिमानियों के मान तानियों के तान न्योटियां की ओट ने आसरियों के आसरी तन तन तन सोडी सुल्तान साहिब श्री गुरु रामदास।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करी अहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट पायो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दार

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर

कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देख है दर्स तेरा राम, लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे, मुख हरे आराध मेरा राम। करहौ कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लेवलावहौ, नानक की बेनंती हर पह, अपना नाम जपावहौ।

प्रभतारह पाखण हमतारह काढ़ लेवहो शब्द सोपाय जियो। भगत वत्सल सुन होत हों निरास हृदय, पतत पावन सुन आसा उर तारह। अंतर जामी सुन कंपत हौ अंतर गात, दीन क दयाल सुन पै प्रामटार हौ। जल तार संगम कै अफल सेंबल द्रोम, चंदन सुगंध

यह अहन ससहज सुभाय दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खस।

ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदार्थ पाया अनेक जतन कर हृदय राखिया रतन नश पैश पाया हर गुण कहते कहन न जाई।

रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो भीखन दुए नैन संतोखे जह देखा तह सोई रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो भीखन दोए नैन संतोखे जह देखा तह सोई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

रख रखनहार दयाला, रख रखनहार दयाला, नानक करके गोले, नानक करके गोले।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा सेउ प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास रख हो।

एक अरदास पाठ कीरत की, गोर रामदास राखहो शरणाई। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसमदी, नूर अरसहु कुर सहु चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहां दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहु। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहां दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहु। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पहला, घर पहला चौपदे। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपाओ निरवैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद। जियो डरत है अपना, कैसे ओ करी पुकार। दुख विसारण सेवया, सदा सदा दातार। जियो डरत है अपना, कैसे ओ करी पुकार। दुख विसारण सेवया, सदा सदा दातार। साहेब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। रहाओ अन दिन साहेब सेविया, अंत छड़ाए सोए। सुन सुन मेरी कामणी,

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दे दाए दाया खेलै सगल जगत, चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के निड़ै के दूर, जिनी नाम ते आया गए मसकत का, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना, जिनी नाम ते आया गए मसकत खाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
1: बड़ी नदर कहे जे अपनी तो नदरी सतगुर पाया एह जियो बोते जन्म भ्रमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवड दाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिलया सच पाया जिन्हें विचों आप गवाया जिन्हें सचो सच बुझाया जिन्हें सचो सच बुझाया
0: பின்னிர நடியே

0: सेव कुमारिये सेव कुमारिये सेव कुमारिये
1: औड़ी दौन मिटा तली खाव जे मिले तमस्त कलाइए कूड़ा लाल छडिया है कमल अलख ते आई है फल ते वेहो पाइए जे वेही कार कमाई है जे होवे पूर्व लिखया दा धूड़ तना दी पाइए मत थोड़ी सेव कुमारिये

0: दारू सुख रोग पया जा सुखताम न होई, तू करता करना मैं नाही जाहो करी न हो। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिसवालियो जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहा। महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है।

0: गावे गुण परन चार खट दर्शन ब्रह मातक सिमरंत गुना गावे गुण शेष सहस जे बरस आद अंत लेवलाक तुना गावे गुण महादेव बैरा के जिन ध्यान निरंतर जान्यो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो राज जोग मान्यो बस्यो अंदर वैर रदंतर सृष्ट सगल उदरे नाम ले तरे निरंतर गुण गावे सनकाद आद जन काद जुगे लक तन तन गुर तन जन्म सक्यथ भलो जक पाताल पुरी जयकार तुन पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल खाने हो हर नाम रसिक नानक गुर राज जोग ते मान्यो पाताल पुरे जयकार तुन कब जन कल बखान्यो हर नाम रसिक नानक गुर राज जोग ते मान्यो
1: सतयुग तै मान्यो बस सतयुग तै मान्यो चलियो बल बावन पायो त्रित तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्रसैन को राज अपै भक्ते जन दियो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोभ कहत माज सोध जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किन कनी सबत चनत्कार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कह कौन मेट सके ईश बम ज्ञान ध्यान तत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
2: गुण गावे रविदास भगत जय दे तरलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ और न जान सुख दियो परिखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो सुख दियो परिखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो
3: गुण गावे पायाल भगत लगाद भयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन ब्यास जिन बेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुकम सब शिष्य सुवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो जप काल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो गुण गावे नवनाथ तन गुरु साज सुमायो माता ता गुण रवे ਜੇਨ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲਰਾਓ ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਪਾਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰ ਬਾਪਰੂ ਰੰਗਰੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਾਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਕਬ ਕਾਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ।

जन्म मरण दुख जाए, कन हर बूंद बसो रो मावल, कुसम बसंत गनंत ना आवे, रव सस

0: गुर रामदास दर्शन परस कहे मथुरा अमृत बैण। मूर्त पंच पर महान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैण।
1: अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरनाखस फारे कर आज, हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत वस्त्र दीन बोसाज, सो दामा अपदा ते राख्या। गनका पड़त पुरह ते काज, श्री सतगुर सुप्रसन्न कल जुग होए। राखो दास पाठ की लाज।
2: नाम अवखद नाम आधार, अर नाम समाद सुख सदा।

साठ साठ मजन होए। सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे, अन पौने जा नाम टेक जित भगत अगाणे। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे। एहो राज जोग गोरे रामदास,

की अमृत छाड बिखे बिख खाई माया मो परम पैपूल सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ।

मानस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे, जिस पास बैठियां सोही है, सबना दा विसाहु। सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे, जिस पास बैठियां सोही है, सबना दा विसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी शांत।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम त्याय जियो सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाइए जियो हर जियो कृपा करे ता नाम त्याय जियो सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाइए जियो गुण गाए बिगसै सदा आनंदिन जां आप साचे भावै अहंकार होमै तजै माया सहज नाम समावै आप करता करे सोई

0: हनुमंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे।
1: बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद ना। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याइया जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताहे। सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

0: जेहवा सूतक कूड़ हकी सूतक विकना पर त्रै पर तन रूप कनी सूतक कन पै लायत बारी काहे नानक हंसा आदमी बद्दे जमपुर जाहे महला पहला
1: सब सूतक परम है दूजे लगे जाए।